वेल स्वीट लिसनर्स, एक मरतबा फिर ताहिर जमान आप लोगों को वेलकम कहते हैं जी. और ये नीला नीला आसमान चलता रहा. खैर, आसमान के हवाले से अगर हम बात करें अभी तो सॉरी माजरत, आज थोड़ा सा मेरा गला भी खराब है. आसमान के हवाले से अगर बात करें हम तो ये है भाई कि आसमान तो खैर आज नीला नहीं है. ये नीला आसमान चलता रहा और सीने में ये दिल जलता रहा. तेरी यादें हैं, तेरे सपने हैं माहिया. कभी कभी जिंदगी के कुछ गीत सिर्फ गीत नहीं होते बल्कि जो है ना दिल की वो पूरी दास्तान बन जाते हैं. उनके बोल इंसान के अंदर छुपे हुए जज्बात को आवाज दे देते हैं. ये नीला आसमान चलता रहा सुनकर यूं महसूस होता है जैसे वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा. हाय हाय.

आप भी अगर अपने दर्द के पहनावों में मतलब जिंदा हैं तो ऐसे दर्द के साथ जीना जो है ना मुश्किल है, वही कि नहीं।

अच्छा लिसनर्स, तो मैं क्या बात कर रहा था, वफा और बेवफाई दोनों जिंदगी के सच हैं, मगर जो है इनमें बहुत गहरा फर्क है। ये हकीकत है कि जो दिल वफा से मोहब्बत करता है वो बेवफाई के बाद भी मोहब्बत करना नहीं छोड़ता, बस उसका अंदाज बदल जाता है, वो पहले से ज्यादा मोहतात, पहले से ज्यादा जो है ना खामोश और पहले से ज्यादा गहरा होता चल जाता है ना। और मैं यहाँ आखिर में यहाँ ये बात भी कहना चाहूँगा इस मौजू पे कि या आखिर में यही भी कहा जा सकता है कि वफा मोहब्बत की रूह है और बेवफाई उस रूह पर लगने वाला मतलब एक जख्म है। जिंदगी में अगर कोई वफादार मिल जाए तो उसे संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि हर दिल इतना सच्चा नहीं होता। और अगर जो है ना कभी बेवफाई का सामना हो जाए तो मेरी ये बात याद रखिए कि लिसनर्स के, तो दिल को ये समझाना चाहिए कि हर टूटा हुआ रिश्ता नाकामी नहीं होता, कभी कभी ये इंसान को अपनी असल पहचान भी दे देता है।

जा मोहब्बत तुझे अलविदा कर दिया, हाय हाय। मोहब्बत को अलविदा कहना जो है ना, ये बड़ा मुश्किल होता है जी, और बहुत ही मुश्किल अमल है ये, बहुत ज्यादा मुश्किल है। कॉलर चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लगे थे जी जुंदे खबर की हुई जी। ओके जी, शुक्रिया। अच्छा, इस ट्रैक के साथ मैं आज कुछ थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, और आज पहली बार मैं इस ट्रैक के साथ अपनी आवाज को शामिल करने लगा हूँ जी। कहीं अगर जो है ना आवाज में कोई थोड़ा सा फर्क महसूस हो तो माफ कर दीजिएगा, ठीक है ना। मैं कोई पक्के वाला सिंगर है नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता रहता हूँ।

अच्छा जी, ये ट्रैक आप सुने और इस ट्रैक के बाद मैं वापस आता हूँ, क्योंकि स्टूडियो में अभी चाय भी आई हुई है गर्मा गर्म। आप भी सोच रहे होंगे कि यार इस गर्मी में ताहिर चाय क्यों पी रहा है। मुझे पीनी पड़ेगी भाई, मुझे इस वजह से पीनी पड़ेगी कि यहाँ पे स्टूडियो में एसी लगा हुआ है और एसी भी, ओ हो, एसी का जैसे ही नाम लिया तो एसी बंद भी हो गया भाई। लेकिन माहौल ठंडा है भाई, कूलिंग है अभी भी। तो मैं चाय पीता हूँ, इसके बाद वापस आता हूँ, ठीक है ना। जय की मत मेरे साथ साथ रहेगा।

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।
2: बेलाडोना गोल्ड फेस वॉश, बेलाडोना गोल्ड सीरम और द बेलाडोना ब्यूटी किट द यविश पे द इस्तेमाल सरा खपल मख गुल रंग कई, खुश रंग कई आओ स्पिन रंग कई और हगहुम द टू नंबर द पारा द मजीद मालूमात द पारा 0300-693-693-93। बेलाडोना को क्रिएशन बाय डॉक्टर हैदर अली मुमन।
3: द चार सदी और द चार सदी सरा द खौशा इलाको द कड़ी दिली बीमारानो दे पारा द खुशहाली खबर द खैबर पुख्तनख्वा मशहूर और मारूफ अस्पताल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल प्राणिस्ता उस्ता सुपखार चार सदा की सुविधा उस द इलाज द पारा पेखवरता दुतलो जरूरत निश्ता मयारी इलाज खार चार सदा की अगम द हैदर मुमंद मेडिकल सेंटर ना ओली चीप हैदर मुमंद मेडिकल सेंटर चार सदा की सिर्फ रिपोर्ट कागजुना टेस्टुना न कतले की बल्कि इंसान और द इंसान दर्द कतले की दलता न गैर जरूरी टेस्टुन की न बेला वजा खर्च की सिर्फ द जरूरत मुताबिक इलाज की द डेरू कलुनो द तजुर्बे न बाद और दोपोए न बाद मुंग दा फैसला उकड़ला जद खिदमात मुंगला चार सदीता रारसोल पकार दे कतासु डेर कड़ी दिलिए डेर गर्जी दिलिए नियोजल मुंगता मुकरा कई औखपल बीमारी मुंगता वाजे उई औखपल बीमारी द होम्योपैथी द सिंगल रेमेडी सरा पयोसु रजु के दनना दनना मुकम्मल खत्म कई द चार सदी द ब्रांच पता याद लरी मर्दान रोड गुलबहार नंबर 2 बर्फानी लारी सरा हैदर मुमंद मेडिकल सेंटर चार सदा मोबाइल नंबर 0330-30-30-704। इलाज हागा चफर को बेलाडोना ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग क्रीम बेलाडोना ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग फेस वॉश यो नवे नुम औ नवे फार्मूला आया तासु द खपल मगद तेर सरी द खात्मे द पारा डेर क्रीमों ने इस्तेमाल कर तेर सरे वृक्षी औ ब्याराशी आया तासु द मग तेर सरो औ दागुनो सासुर बेंतहा जदरा दस्ते दे आया तासु पर स्किन बारिश्ता खुतर उस पूरी तासुर ला इस किस्म क्रीम इस्तेमाल करी निधि औ द अगे घट वजह तासु स्किन या इंतहाई सेंसिटिव दे इस किस्म क्रीम नशे लगोले द किस्मा ना उम्मीदा जनानो और दनारिनो दोपारा द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान द तुर्की इस्तेमाल युवा खास फार्मूला बेलाडोना ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग क्रीम बेलाडोना ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग फेस वॉश कुमच खास फार्मूला द तेर सरो द खात्मे दोपारा कुमच डेर खास फार्मूला द दाहुनो द खात्मे दोपारा और कुमच खास फार्मूला द सेंसिटिव स्किन दोपारा पाकिस्तान के फर्स्ट टाइम दग क्रीम द ऑर्गेनिक इंग्रीडियंट्स ना तैयार शिविर और इस किस्म नुकसान तावान नलरी ओलचे दग फार्मूला पैराबीन और सल्फेट फ्री दी देखे इस किस्म खुशबू वगैरह न दे इस्तेमाल शिवे नुकतासो डेर न उम्मीद शिवे और द क्रीमानो नमो बेंतहाज मोड़ दे
4: राजी जी राजी बिल्कुल राखले मा दस्तासु पौधराना खिदमत की हाजिरियम द FM 93 रेडियो दिलबर द चार सदी या द FM 94 रेडियो दिलबर द सवाबई पली कबांदी चिसुमरा अवरिदुन की दा टाइम जमा आवाज उरी द सवाबई द चार सदी चिसुम रहम जमा ख्वाग औद्रान औमिनना क लिसनर दा टाइम जमा आवाज उरी खगु दस्ता सुटूलु लगना डी रजियात मनना डी रजियात खुशाल शई जी बिल्कुल जर अगले मा दस्ता सुप औद्रान खिदमत की हाजिरी मो इंशाल्लाह पदग प्रोग्राम की बता सुर डी खबरी कहू प सवाबे चैनल बानी समुग दा प्रोग्राम लिंक ते पर लोगो सातुनु की बात
2: तासु द मख्त
4: खदग चार सदा चैनल बानी हम जमा दा प्रोग्राम लिंक शु तासु मासरा यो दाव की चीज दग द हिदर मोमंद मेडिकल सेंटर द चार सदी और ददी सरा द हिदर मोमंद अस्पताल द सवाबे दग प्रो मोरा सरवावरी ब्याज राजम बाकायदा द प्रोग्राम शुरुआत को मौजमा कोशिश नंदा दे चीज नन पदग प्रोग्राम की दस्ता सु कॉल डिर जात वखलमा खगु कतासु मात पदग प्रोग्राम की कॉल कवि नो प 0312-88-150 नंबर बने तासुमात काल कवले शही औकता सुमात पदा प्रोग्राम की मैसेज कवई 9 पर 0300 93 में 693

के जी बिल्कुल दिन उड़ना याद आओ ना गर्मी जी की ढेर ज्यादा गर्मी है ऊपर गर्मी की पंखता बिल्कुल निष्क्रिय वाले दाखी कट हो जाता जी छे मुंग गर्मी ले वो निकड़ी करता तब ना छूता बया दो छे ता बया दो छे ता कमे खबर दिया अड़ू याद हो दे दाब की चारों उसी जी छे लगन बताओ बार बार याद हो जी अयो सर मैं आता है तेरा प्रोग्राम की देख रहे इंशाल्लाह भैया वो खुशहाल है देख रहे मुतमईन भाई देख रहा नन जी का खबर को मैं डाले जाता जरूरी डाला है देहरी जाता मुफीद दा देर जाता दकार दा कसत पकुर के मशुमान भी दादी उम्र दा एक नवाले तर पांच साल पूरी भी यानी दो पिंजो खालो पूरी चिकन मशुमान दी दागे बारे समंग द स्किन हर्ब स्प्रे इस्तेमाल चिकन दे आगे इंतहाई बेहतरीन दे देर जाता दकार दे उस द फायदे खबरदार जी छे जो चिकन खबर को मुझे दाने का पकावर सरवाव रही था दसों की जीता इंतहाई पकावर सरवाव रही तो दे खबरें न फायदा तलाश के देखे रहा भी आप खुशुसी तो कमाने चिकन मशुमान दी

आप सुन रहे हैं दिलबर FM सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर FM 94 सवाबी। दिलबर FM 94

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: Music and Information Station 94

राजी लाइफ कॉल ला रही शिरकत बकोई ओ दिन लावा द मैसेज दिला रहे बहुम राजी जी द ध्रुव यारानो द भंडार द दिलबर रेडियो चार सदी ने बिल्कुल लाइव हो रही द दिलबर रेडियो द सवाबई ने बिल्कुल लाइव हो रही था सुबह फिलहाल द लाइफ कॉल कोलो कुछ न कोई हो रासरा तकरीबन निम घंटे पर इधर समुद ध्रुव यारानो द भंडार असर हो रही होती क्यों करी छी सब पोजीशन दे अजमल लो फजल नंसर आउड़ी दी सेनिदी राउड़ी जी द्रे यारानो

0: ग्रानो द्रनु खोगो मिने वालो यो आर ब्याम द द्रिव यारानो भंडार शुरू की वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम ऑल सरे मुशे जी नन्ना नहीं उरस द मंगल उरस द अजमल द आवाज बदे उरी दिले वीडियर
1: सड़े लेवनी की
0: सडीर जाड़े यादुनी अजमल तरह ताजा कड़ल लाओ द स्टूडियो गड़े की टन्ना हमेंटा आओ लस बजी जमासर द स्टूडियो पे गड़े की शुविधी दाद काल लो दर स्पगिष्टम द स्पगमी म्याश्ते नन
1: सड़े ले
0: दिर्ष्टम नेटा दा आओ
1: निकीगी पदे गुरनों की सड़े ले निकीगी पदे गुरनों की सबल शांति खाइस्ते
0: सबाला जुलाई शुरू की गई
1: पदे
0: द जून म्याश लाड़ ले जियो द जून द म्याश संग तेरे सुल संग तेरे न सुल
1: गुरनों की सड़े
0: वो सबा नहीं द खैर सर द जुलाई म्याश शुरू की गई नवी जिम्मेवारियां ने नवी
1: पदे
0: ख्वारियां ने शुरू की गई जियो दगा द
1: सबल
0: द्रेव यारा दगा भंडार लदल रागली यू राजी मुंसरा अखपल आवाजुनो अखपल
1: शांति खाए
0: गगरा सर जरूर शुरू की जी।

वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन तासु दिलबर रेडियो चार से लाइव हो रही तासु दिलबर रेडियो सभी लाइव हो रही द्री यारानो के तासु कुर्बा डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद समासर ख्वागो यारा नगली जी वेलकम और मैसेज जर जर आओ लेगे फजल सर मोबाइल बिल्कुल लास्ट की दे जर जर बस्तासु में जुनो हम शामिल जी सिर्फ कोशिश की जी दे नंबर नहीं हो मैसेज आ लेगे बार बार मैसेज जर आ लेगे प्रिया जान लबा जोर नो अर्गे जी नो वेलकम प्रिया तहुम वायु दुआ दे दीर वाला तहुम हर कले वायु सवेरा दो मराबात हर कले वायु इरशाद अली जमंग आवाज हो रही वेलकम इरशाद अली द देने लावा मुंग सरबल सुख दिया सनम अफरीदी सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम अनुबाद सवाबई विच नंबर याम जमोर मुझे हर सनम सबादरो Sweetie from Shabka Day. We Dr. Bhai, the song Zama Hum Dir Zat Favorite Day. Basu Kumungur Banji, then you video Jodha Kala, video Jindan Matabha, Dumra Viral Shule Chi. The Aga video the Viral Ke, Dona Baad, the Tol Nakhata Masala Da Jodha Shwe, the Aga video. Bani Da Song Chindan Da, Patol TikTok Jindan Copyright, or Bani Da Le, Tol TikTok Nijidan Da Song Lirk Lali. No, Zaman Kismat Da Gadeji. Gini Aga video Intihaidi Rizyato Viral Shwe, Dumra Viral Shwe Chi. Zaman Aga video Intihaidi Rizyato Khalko Gatali Wa, then you video Jodha Kala, video Jindan Matabha, Dumra Viral Shwe Chi. The aga video the viral ke do na baad the tol na khata masala da jod shu da video bani da song chidan da patol tiktok jidan copyright aur bani da le tol tiktok ne jidan da song lyric lo ji no zamun kismat da gade ji gine aga video intihaidi rezato viral shu dumro viral shu chi zamun aga video intihaidi rezato khalko gatelwa aur de rezato katelna baad tiktok chidan

अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।